0: the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
1: Unscripted, untamed, unforgettable.
2: Lord Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
1: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
3: It's a whole new frontier.
4: Oh my God!
1: The absolutely real.
3: Cold like this can kill you.
1: Reality series.
2: It's on like Donkey Kong.
1: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
5: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں حالات حاضرہ کی اور ویزوں کے حوالے سے. ویزا فیس میں حالیہ اضافے کے بعد آسٹریلیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں ویزے کی درخواست دینے کی فیسز سب سے زیادہ ہیں. یہ ایک مہنگا ملک بن گیا ہے. اس حوالے سے تفصیلی پوڈ کاسٹ سنیے افنان ملک سے.
6: سامعین, یکم جولائی 2026 کے آتے ہی نئے مالی سال میں ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز کی جانب سے ویزا فیس میں نمایاں اضافے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, جہاں پر کئی ویزا کی فیس میں تقریباً 25% تک کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. جہاں پر تمام ویزا فیس متاثر ہوئی ہیں, وہیں سب سے بڑا اضافہ اسٹوڈنٹ ویزا فیس اور 485 ورک ویزا میں کیا گیا ہے. 485 ورک ویزا کی فیس سال میں دوسری مرتبہ بڑھائی گئی ہے, جو گزشتہ برس $2,600 سے بڑھ کر پہلے $4,600 اور اب تقریباً $5,750 ہو چکی ہے. اس سلسلے میں آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ آیا یہ فیس کس طرح سے بڑھائی گئی ہے اور اس کا لوگوں پر کس طرح کا اثر پڑے گا. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران علی لاکھانی, جو کہ ویژن کنسلٹنسی کے نام سے اپنی کمپنی چلاتے ہیں اور گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے مارا ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ عمران ایس پی ایس اردو سے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیس میں اضافہ ہے یہ کس تناسب سے کیا گیا ہے.
7: یہ فیس اراؤنڈ 25% بڑھائی گئی ہے, جبکہ انفلیشن قریباً 4% چل رہا ہے.
6: تو یہ مجھے ساتھ بتائیے گا کہ اس فی کے اندر جب ہم 485 اور اسٹوڈنٹ ویزا دیکھتے ہیں, اب ان کی فیس اس وقت کس جگہ پر کھڑی ہے. ایک بڑی بات کی جا رہی ہے 485 کے بارے میں کہ یہ فیس بار بار بڑھائی گئی ہے, اس سلسلے میں بھی بتائیے گا.
7: اسٹوڈنٹ کی فیس جو پہلے $2,000 تھی, چاہے وہ آف شور سے اپلائی کرتے ہیں یا آن شور پہ ویزا اپلیکیشن لاج ہوتی ہیں, جو 2,000 تھی وہ 2,500 ہو گئی ہے. 485 کی جو اپلیکیشن تھی جو آن شور پہ تھی, اس کی فیس ابھی 4,600 تھی, بڑھ کے اب ہو گئی 5,750. یہ میں بات بتاتے چلوں آپ کو کہ یہ فیس فیبری 28 تک, اس کی فیس 2026 میں اس کی فیس 2,300 تھی. گورنمنٹ نے ریسنٹلی اس کی فیس 4,600 کی تھی اور دوبارہ فیس گورنمنٹ نے یہ 5,750 کر دی ہے. تو ود ان اے ون ایئر, ود ان 6 months, یہ فیس 2,300 سے لے کے 5,750 کر دی گئی ہے.
6: تو اب ایک, اگر ہم تین بندوں کی فیملی کی بات کرتے ہیں, چونکہ یہ فیس تو ایک انڈیویجول ویزا اپلیکنٹ کی ہے, لیکن مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ فیملی موجود ہے, تو وہ کتنی فی دے گا؟ اور اگر وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پارٹنر بھی موجود ہے, تو وہ 485 کے لیے تقریباً کتنی فیس ادا کرے گا ویزے کی مد میں؟
7: اگر وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے فار ایگزامپل, آپ نے کہا, اور اس کو ویزا ملا ہے سپوز 3 سال کا, بٹ کسی وجہ سے اس کی ریسرچ رک گئی ہے اور اس کو 3 یا 6 مہینے کا ویزا ایکسٹینڈ کرانا ہے, تو ایک نئی ویزا اپلیکیشن لانچ کرے گا. وہ شاید 3 مہینے کے لیے ہو, چاہے 2 مہینے کے لیے ہو. اگر وہ اکیلا ہے اور اس صورت میں اس کی فیس $2,500 ہے, مگر لیکن اس کے پاس اگر ان کی وائف ہے اور ساتھ میں ایک بچہ ہے, تو اس کی فیس ہوگی $4,530, چاہے وہ 2 مہینے کے لیے ویزا ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہو. बट वही एप्लीकेंट अगर वो सोच रहा है कि उसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 485 अप्लाई करना है तो उसकी टोटल फीस हो जाएगी $10,075.
6: तो ये जब हम तकाबली जायजा लेते हैं उन तमाम मार्केट से जिनके अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिनमें बड़े ममालिक शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, तो इस तमाम तनाजुर में आप ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पर देखते हैं, खास तौर पर इस वीजा फी के तनाजुर में?
7: अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिटिव नहीं है फी के मुकाबले में. अगर फी की बात की जाए तो हम US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करते हैं, इवन न्यूजीलैंड को भी साथ में कंपेयर करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की फीस सबसे ज्यादा है. और ये अनफॉर्चुनेट है कि मेरी खुद की भी ब्रांचेस हैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, वो भी स्ट्रगल करती हैं ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करने के लिए.
6: ये बताइएगा कि ये ना सिर्फ ये वो वीज़ाज हैं जो अमूमन अप्लाई किए जाते हैं, अलावा अजी इन वीज़ाज को ब्रिज करने के लिए जो ब्रिजिंग वीज़ाज हैं उनकी फी में भी कोई तब्दीली की गई है क्या?
7: बिल्कुल वो की गई है, और वो तो बहुत ही ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है. पहले मैं ब्रिजिंग का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ब्रिजिंग वीजा बी अप्लाई करना होता है जब कोई भी किसी भी एप्लीकेंट के पास वीजा प्रोसेस चल रही होती है, उसके बाद ब्रिजिंग ए होता है, उसको अगर अपनी कंट्री को ट्रेवल करना है, वापस आना है, तो ब्रिजिंग बी चाहिए होता है. उसकी फीस कल रात तक $190 थी, गवर्नमेंट ने बढ़ा के $575 कर दी है ब्रिजिंग बी की फीस. ब्रिजिंग बी का मकसद ये होता है कि जो वो लोग जिनके वीजा एप्लीकेशन ऑन शोर पे चल रही है बट उनको ट्रैवल करना है, तो उनको ट्रैवल करके वापस आते हुए ये वीजा की रिक्वायरमेंट होती है. मैं एक भी बात आपको बताऊं कि 491 का जो वीजा है उसका प्रोसेसिंग टाइम 15 महीने से 23 मंथ चल रहा है, 23 महीने चल रहा है. 190 के एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 13 महीने से 17 महीने टाइम लग रहा है. अगर इतना टाइम लगेगा किसी भी एप्लीकेशन को, तो फिर इन एप्लीकेंट्स को अपनी फैमिली से मिलने के लिए या उनको कोई भी और एक्टिविटीज है, या फिर उनको घूमने के लिए भी अगर बाहर जाना है किसी कंट्री में, न्यूजीलैंड जाना है, तो उनको वीजा लेना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली ये उनको पे करना पड़ता है. पहले ये $100-200 बढ़ के अब ये मुझे लग रहा है जैसे $500 कर दिए, मुझे तो लग रहा है शायद ये अगले साल $1,000 हो जाएगा.
6: फहद जब्बार एडलिंक के नाम से एक कंसल्टेंसी भी चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में. जब फहद बहुत शुक्रिया आपका. ये बताइएगा कि ये जो फीस बढ़ने का फैसला है, क्या ये मतवक्को था या मार्केट के अंदर ये खबर जो थी वो एक सरप्राइज थी?
4: सिनेरियो ये है कि जो कि इनी अकाउंट था, जो कि पोर्टल होता है इमिग्रेशन का, इट वाज अंडर मेंटेनेंस फ्रॉम 6 PM लास्ट नाइट. उसका सिनेरियो ये होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है और उस टाइम पे इस तरह का कुछ होता है, सो देयर आर थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड. हमें एक्सपेक्ट होता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का होने वाला है. बट ये एकदम से जो बहुत ज्यादा फी इंक्रीज हो गई है, इसका एक्सपेक्टेड नहीं था. यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं जो हम सोच रहे थे कि शायद के पोर्टल के अंदर हो जाएंगे, जो कि हुए भी हैं. बट द मेन थिंग इज के जो फी है उन्होंने वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर दी है. स्टूडेंट वीजा की फी जो कि ऑलमोस्ट $700 हुआ करती थी, उसको इंक्रीज करके पहले $1,600 किया, फिर $2,000 किया, एंड नाउ इट्स $2,500. और सेम सिनेरियो 485 की फी का है, 4,600 इंक्रीज कर दी गई थी, नाउ 5,750, 5,000 से भी ज्यादा हो गई है. तो जो स्टूडेंट वीजा पे अपनी टीआर डालने की कोशिश कर रहे थे और जस्ट वेट कर रहे थे अपने कम्प्लीशन का, वो सारे स्टूडेंट्स की अब हमें कॉल्स आ रही हैं एंड दे आर सेइंग कि हम क्या करें, आप बताएं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है.
6: आप ये बताइएगा कि ज्यादातर जो लोगों के आपके पास मसाइल आते हैं वो क्या स्टूडेंट वीजा लॉन्च कर रहे होते हैं या फिर वो वर्क वीजा यानी 485 की तरफ उनका रुझान होता है?
4: देखें, इसका सिनेरियो ये है कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी जिन्होंने स्टूडेंट वीजा की एक्सटेंशन डालनी होती हैं और जिन्होंने अपनी टीआर डालनी होती है. कोई भी स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान से वीजा अप्लाई कर रहा होता है या किसी भी और कंट्री से वीजा अप्लाई कर रहा होता है, वो तो बेसिकली स्टूडेंट वीजा ही अप्लाई कर रहा होता है. जब वो ऑन शोर आ जाते हैं तो फिर उन्होंने आके अपनी स्टूडेंट वीजा की एक्सटेंशन भी डालनी होती हैं, अगर वो टाइम से अपना कोर्स कम्प्लीट ना कर सकें या कोई स्विच कर लें कोर्स, एंड देन उन्हीं स्टूडेंट्स ने बाद में टीआर भी डालनी होती है. सो इट्स अ 50-50 रेशो, लेकिन मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स जो कि टीआर पे जा रहे थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि टीआर की फी अभी कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ $2,600 थी, समवेयर अराउंड दैट, और वो एकदम से इंक्रीज करके $4,600 कर दी गई, और अब 4,600 से भी $5,700 से भी ऊपर चली गई है. स्टूडेंट वीजा की फी में हालांकि इतना डिफरेंस नहीं आया, 2,000 थी उसको 2,500 कर दिया, लेकिन जो मोस्टली इफेक्ट हुए हैं इससे वो बेसिकली वो स्टूडेंट्स हुए हैं जो कि PR पे जा रहे थे.
6: इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही वीजा एप्लीकेंट जो हाल ही में ये वीजा लॉज करना चाहते हैं और वो इन्हीं बढ़ती हुई कीमतों से मुतासिर हुए हैं. बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि आप कब ये वीजा लॉज करना चाह रहे थे और इससे किस तरह से मुतासिर हुए हैं.
8: अच्छा, मैंने जो है वो मेरा माइंड था कि मैं लास्ट वीक वीजा अप्लाई करूं, लेकिन इंश्योरेंस लेना इस तरह की चीजें सारी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं. तो मुझे इस चीज का नहीं पता था कि 1 जुलाई से जो है वो एकदम जो है वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, फीसेस इंक्रीज हो जाएंगी. तो लास्ट डे तक, कल तक मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो पूरे थे, खाली एक जो चीज थी वो मिस थी. तो रात को जिस टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल पे था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मैसेज कन्वे किया कि आपने TR अप्लाई की है या नहीं. तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ की जो है ना वो TR अप्लाई करनी थी, वो ऑफशोर होती हैं. तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस तरह आप चेक करें जाके पोर्टल पे, क्योंकि फीसेस वगैरह बढ़ गई हैं. तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था. क्यों? क्योंकि पहले प्रीवियस जो है ना वो फीस 4,600 समथिंग थी, तो उसके बाद एकदम ये जंप लेके फीस 57 समथिंग पे चली गई है. तो जरी बात है, ये एकदम सडन इतना बड़ा जो है वो इसने जंप लिया है. तो प्रीवियस जो है वो मेरा माइंड 46 समथिंग के मुताबिक चल रहा था, तो मैंने उस तरह अपना जो है वो बजट मैनेज किया हुआ था. तो एकदम जो है वो 1,000 अबव हो गया काम. तो अब फिर जो है वो चीजें थोड़ी दोबारा सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा. जरी बात है, फीस इंक्रीज हो गया तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले फीस जिस जो फीस थी उसके मुताबिक हम लोग चल रहे थे, अब फीस चेंज हुई है, जरी बात है पे तो हम नहीं करना है. तो एट द एंड जो बर्डन है वो जो TR एप्लीकेंट होता है उसी पे आता है. क्योंकि मैं अब इस वीजे के को अप्लाई करने जा रहा हूँ वाइफ के लिए, तो अब ये इम्पैक्ट मेरे पे है कि अब मैंने कैसे दोबारा ये चीजें मैनेज करनी है. तेरी बात है, 1,000 का एकदम गैप आया, अब मुझे फिर 5 दिन 10 दिन और चाहिए होंगे. क्योंकि पहले मैं 46 समथिंग के हिसाब से चल रहा था, अब मैं 57 पे जाऊंगा तब मेरा वीजा अप्लाई होगा. तो ये चीजें जो है ना, ये एकदम सडन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो एप्लीकेंट होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कम से कम इन चीजों के बारे में जो है वो 10-15 दिन 20 दिन महीना पहले ये चीजें थोड़ी जो है ना वो हाईलाइट होनी चाहिए, ताकि जैसे अब मैं इसका विक्टिम हूँ. तो मैंने तो ये वीजा अप्लाई करना था 2 दिन पहले, लेकिन मैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कर सका. अब मैं अप्लाई करूंगा तो मैंने 1,100 ज्यादा फीस देनी है. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चीजें कम से कम 1 महीना पहले जो अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि ये चीज क्लियर कर दें, ताकि जिन्होंने अप्लाई उस टाइम करना हो तो वो अप्लाई कर लें. तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है.
6: ये थी आज की पॉडकास्ट. आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूँ अफनान मलिक.
1: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.
5: जी सामईन, तो इसके साथ वक्त हो रहा है कि हम नशरियात मिलें दूसरा वक्फा. लेकिन जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो आपको सुनवाएंगे कि कुदरती मनाजिर और फितरत से करीब रहना इंसानी सेहत और जहन पर क्या असरात मुरतब करता है SBS एग्जामिन्स के पॉडकास्ट पे. तो हमारे साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं.
9: माहिर उस्ताद शागिर्दों को आगे बढ़ाने के लिए नित नए तरीके ढूंढते हैं. SBS लर्न पर असातिज़ा के लिए निसाब के मुताबिक पढ़ाई का वसी जखीरा मौजूद है. sbs.com.au/learn पर जाइए. SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शोज और फिल्में मुफ्त स्ट्रीम कीजिए. किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर देखने के लिए SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पर जाइए. दुनिया भर के लोगों की कहानियाँ देखिए SBS के अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री शो डेटलाइन पर। डेटलाइन हर मंगल को 9:30 शब या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए। चिलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट ऑस्ट्रेलियन आइन में मुल्क के कदीमी बाशिंदों के हक को तस्लीम करने की मुहिम का हिस्सा है। तफसील के लिए sbs.com.au/chiluru-statement पर जाइए।
10: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
11: sbs.com.au/urdu को अपना ऑनलाइन घर बनाएं। ताज़ा तरीन खबरें, हालाते हाजरा और तफरीही प्रोग्राम sbs.com.au/urdu पर। SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।
5: SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान वरदा वक़ार। सामईन, नशरियात के इस हिस्से में हम आपको सुनवाएंगे SBS एग्जामिन्स की किस्त। SBS एग्जामिन्स पर आप मुख्तलिफ मौजूआत के हवाले से पॉडकास्ट सुनते रहते हैं जिनमें इस्लामोफोबिया, एंटी सेमिटिज़म और नस्ल कशी, नस्ल परस्ती के हवाले से पॉडकास्ट भी शामिल हैं। इस हफ्ते की किस्त में एक हालिया तहकीक में कुदरती मकामात को न सिर्फ मुलाकात की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया गया बल्कि इसको ऐसे माहौल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया जहां पनाह गुजीनों को बिला पूछगर या फैसला सुनाने के तहफ़ुज़ का एहसास हो। इस हवाले से SBS एग्जामिन्स की इस हफ्ते की किस्त में जानिए कि LGBTQI कम्यूनिटी ने इस पूरे तहकीक से क्या असर लिया।
9: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
12: माई जर्नी इन ऑस्ट्रेलिया वर नॉट ईजी। आई वर स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश लॉन्गलीनेस एंड माई एक्सेप्टेंस सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी।
5: 1980 की दहाई में जापान ने शेरन यो को मुतारफ कराया जिसे जंगल में नहाने या जंगली माहौल से लुत्फंदोज होना कहा जाता है। इसका मकसद टेक्नोलॉजी के थकावट का इलाज करना था और लोगों को मुल्क के जंगलात के साथ दोबारा जोड़ने और उनके तहफ्फुज़ की तहरीक को आगे बढ़ाना था। 1990 की दहाई में मुहक्किकीन ने कुछ जंगलाती अनासर के जिस्मानी असरात का मुताला शुरू किया जैसे लकड़ी की खुशबू, बहते हुए पानी की आवाज़ और जंगल के मनाजिर। उन्होंने दरियाफ्त किया कि कुदरत में वक्त गुजारना दबाव को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है और मौजूदा एक मकामी मुताला जो मेलबर्न में किया गया उसमें यह पाया गया कि ये भी तन्हाई को कम कर सकता है जो कि LGBTQAI+ मुहाजरीन और पनाह गुजीनों के एक ग्रुप के साथ किया गया। इस किस्त में हम दरियाफ्त कर रहे हैं कि कुदरत किस तरह तन्हाई का मुकाबला करने में मदद दे सकती है।
13: Being LGBTIQ can be itself isolating in terms of accessing community and you know, building relationships and connecting to people here in Australia. Many of our community members tell us that people from their own cultural background are the ones that they feel least safe with and least connected to here in Australia because they represent a kind of a culture that people have had to flee from in order to be safe.
5: एन सेल मेलबर्न में LGBTQIA+ पनाह गुजीनों और पनाह के मुतलाशियों की मदद करने वाली एक तंजीम मैनी कलर्ड स्काई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
13: Loneliness is a huge challenge for the community that we work with, and yeah, I think that comes from the fact that being both LGBTIQ and newly arrived means that the places where you feel safe and welcome are quite small and far between. And many of our community members talk about having to make a choice between do I stay connected to my culture and my background and my family and community, or do I find a place in LGBTIQ+ community? And there's a difficult navigation between those.
5: मैम को 11 साल पहले वियतनाम से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद इसी का सामना करना पड़ा।
12: Back then I were very shy and my English is limited, so I mostly stay with my Vietnamese community and my extended family member. So in that I feel safe, but I don't really go outside much.
5: 2017 میں انہیں پتا چلا کہ آسٹریلیا میں ان کے خاندان نے ہم جنس شادی کو قانونی قرار دینے کے خلاف ووٹ دیا ہے.
12: And then I keep it everything for myself and I try to hide my sexuality and my identity as well. Over time I hear people talk about me like when I come out like a lesbian, they always said like you got mental health, you are not lesbian. So I was so confused and I have no one to talk. I withdrew myself.
5: میم کو مینی کلرڈ اسکائی سے متعارف کروایا گیا اور انہیں ان کی بدھ کی رات کی عشائیوں میں شرکت کی ترغیب دی گئی.
12: So since the first big Wednesday, I keep coming there. So I coming there for myself. I'm not coming for anyone, for myself because I feel safe in there. I feel welcome and I feel accepted like who I am.
5: اس پروگرام کے ذریعے میم کو 36 دوسرے LGBTQIA+ پناہ گزینوں اور پناہ طالبوں کے ساتھ 8 ہفتے کے قدرتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی.
14: We want to see how can nature help to build community where people feel less lonely and more connected to each other and place.
5: نرگیس اوپاچن یونیورسٹی آف میلبرن میں قدرت اور انسانوں پر ریسرچ کے سینئر فیلو ہیں. تحقیق کی قیادت کرتے ہوئے نرگیس نے یہ جانا کہ کیسے قدرتی نسخہ یا دوا یعنی ایک صحت مند پیشہ ور کی طرف سے لکھی گئی وہ تجویز جو ایک شخص کی صحت پر بہتری کے لیے اثرات مرتب کرے قدرت میں زیادہ وقت گزارنے سے اس گروپ پر کیا اثر ڈالے گی. اور دنیا کے دیگر 5 شہروں میں بشمول بارسلونا اور پراگ دیگر محققین اور گروپوں کے ساتھ یہی کام ہو رہا ہے جسے کم آمدنی والے طبقات اور بزرگ افراد کے ساتھ تحقیق کی گئی ہے.
14: It was the key of the program actually, this relationship building with a community organization whose members are LGBT asylum seekers and refugees and who are often actually excluded from conversations around health and well-being and are quite forgotten.
5: 8 ہفتوں تک ہر ہفتے شرکا میلبرن میں قدرتی ماحول میں ملتے تھے جہاں وہ باغبانی کرتے، باہر کھانا کھاتے، پرندوں کا مشاہدہ کرتے، ساحل پر ریت پر چلتے اور ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے. بہت سے شرکا نے کہا کہ پہلی بار انہیں احساس ہوا وہ کسی خاص جگہ کا حصہ ہیں.
14: The things that we would be measuring in the project were things like whether there is a reduction in loneliness, whether there is an improvement in connection to nature. And in both cases we saw some reduction.
5: یہ ایک قسم کا سماجی نسخہ یا دوا ہے جو اس خیال پر مبنی ہے کہ صحت پر سماجی اور ماحولیاتی عوامل کا اثر ہوتا ہے، نہ صرف طبی عوامل کے. قدرتی مناظر کا استعمال نہ صرف ملاقات کے مقام کے طور پر ہوتا تھا بلکہ ایسی جگہ تھی جہاں شرکا کو بغیر سوال یا تنقید کے محفوظ ہونے کا احساس ہوتا اور جہاں وہ بغیر کسی دباؤ کے دوسرے لوگوں سے تعلق بنا سکتے تھے.
14: Currently, this is a growing evidence-based approach, nature-based social prescribing, and we are hoping that with our research we are adding to it. Based on the participants' feedback about particularly what elements of nature are helping, it serves as a neutral, non-judgmental ground to connect. It's rewarding and reassuring that this is working, and we as researchers we're trying to see how we can continue working in this field and expand it to different communities.
12: With nature program, it is a gentle way for me to meet people and connected with the community. So nature is healing. We've been there together and that's why like I choose to be in nature. I feel calm, I feel peace and connection to the community.
5: ایس بی ایس ایگزامنز کی قسط اولیویا ڈی اوریو نے تیار کی جو ایس بی ایس اردو کے لیے پیش کی ہے وردہ وقار نے. مزید معلومات کے لیے sbs.com.au/sbsexamins پر جائیے.
9: لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے.
5: سامعین نشریات میں شامل کرتے ہیں ایک اور گیت، سنتے ہیں اور کا تم.

0: जी हाँ दोस्तों, तुसी फीफा वर्ल्ड कप दे सारे मैच बिल्कुल मुफ्त देख सकते हो SBS TV चैनल्स जां फिर अपने फोन या इंटरनेट राही SBS ऑन डिमांड उत्ते। एक होर चीज़ बिल्कुल मुफ्त दिती जा रही है SBS पंजाबी वालों, ते ओ ने जी करण औजला दे ऑस्ट्रेलिया कॉन्सर्ट दियां टिकटां। असी एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं जी, जिहदे अंदर तुसी दसना है कि तुसी करण औजला दे वड्डे फैन क्यों हो। इहदे विच तुसी कोई किस्सा दस सकते हो, कोई कहानी सुना सकते हो, कोई वीडियो बना के भेज सकते हो, फोटोआं भेज सकते हो, तुहाडे कोल कोई खास पोस्टर हुण करण औजला दे, या जो भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि तुहाडा करण औजला दे प्रति जो प्यार है उहनूं खासम खास बनाउंदी है। इह सारियां चीज़ां भेजो जी SBS दे SBS पंजाबी दे ईमेल ID punjabi.program@sbs.com.au उत्ते। ते जिहड़ी एंट्री सब तो ज़्यादा दिलचस्प होएगी उन्हों मिलेगा करण औजला दे मेलबर्न अते सिडनी दा जिहड़ा कॉन्सर्ट है उन्हां दियां मुफ्त टिकटां। जे तुसी भी जितना चाहते हो फ्री टिकटां, कुछ नहीं करना, बस ईमेल उत्ते लिख के भेजना या फोटोआं वीडियो जिहड़े मर्जी मीडियम राही अपना प्यार जिहड़ा है वह जाहिर करना है जी, ते दसना कि तुसी करण औजला दे फैन क्यों हो। ईमेल ID फिर तो नोट कर लो, punjabi.program@sbs.com.au punjabi.program@sbs.com.au उत्ते। जदों तक तुसी ईमेल कर रहे हो, मैं एक छोटा जिहा ब्रेक लैके हुणे ही वापस आई।
1: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
2: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ SBS ਵਰਲਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ। 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਮੁਫਤ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ 32 ਤੇ ਜਾਂ SBS ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਸ ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇਖੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ NITV ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ SBS ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਕਲਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ SBS ਵਾਈਸਲੈਂਡ ਚੈਨਲ 31 ਉੱਤੇ। ਦ ਉਲੂਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਸ ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ sbs.com.au/ਉਲੂਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ।
3: Streaming live on SBS On Demand, the Tour de France.
4: It is race on.
3: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
4: The tension, it is going through the roof.
3: Race for the rivalries.
4: Oh!
3: The sacrifice. And the ultimate test of endurance.
4: Come on, come on, come on.
3: This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and On Demand.

0: जी हाँ दोस्तों, जे तुहानू भी यह गाना या पंजाबी गाने पसंद ने ते तुहाडे लई SBS पंजाबी एक बहुत ही वधिया मौका लैके आ रहा है। करण औजला दा जिहड़ा ऑस्ट्रेलिया विच कॉन्सर्ट होण जा रहा है, सिडनी विच, मेलबर्न विच, वख-वख कॉन्सर्ट दियां मुफ्त टिकटां SBS पंजाबी दे रहा है जी। पर इस कॉन्टेस्ट विच भाग लैण लई एक छोटे जे सवाल का जवाब देना है। सवाल है जी कि वॉट मेक्स यू द बिगेस्ट करण औजला फैन, कि जे तुसी करण औजला दे फैन हैगे हो तो अजिहा की है जो तुहाडा करण औजला दे लई जो प्यार है उन्हों खास बनाउंदा है। अपना अपने करण औजला दे लई फैंडम या प्यार दा इजहार करदे होए कोई फोटो, वीडियो, लेख या कोई शायरी जिदा भी तुसी इजहार करना चाहो कर सकते हो जी। तो भेजो उस इजहार नू punjabi.program@sbs.com.au उत्ते ईमेल करके। जिहड़े जवाब सब तो इंट्रस्टिंग होणगे उहनां नूं मिलणगे जी फ्री पास। ईमेल एक बार फिर तो सुन लो, punjabi.program@sbs.com.au। मिलते हैं जी ब्रेक दे उस पर।
1: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk. Traditional methods and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
2: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਕਲਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ SBS ਵਾਈਸਲੈਂਡ ਚੈਨਲ 31 ਉੱਤੇ।
3: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
2: ਸਵਾਦ ਲਈ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਦੇਖੋ SBS ਫੂਡ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੈਨਲ 33 ਉੱਤੇ।
4: Launch season 4, the Arctic.
5: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
6: It's a whole new frontier.
7: Oh my God!
5: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
8: SBS रेडियो ऐप नूं आज ही डाउनलोड करो ते अपने पसंदीदा प्रोग्रामां दा आनंद माणो। इस नूं ऐप स्टोर जां गूगल प्ले तों मुफ्त प्राप्त करो।

0: ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
2: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर। शुक्रवार 3 जुलाई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि वीजा संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, तो आज कार्यक्रम में इससे जुड़ी कुछ जानकारी रहेगी आपके लिए। भारत से रिपोर्ट तो कार्यक्रम का हिस्सा रहेगी ही और मुलाकात करेंगे एक वादक कलाकार के साथ में जो बजाते हैं एक अलग ही तरह का साज। तो साज की बात हुई है तो आइए मैं आपको एक धुन सुनवाती हूँ। आप इसमें से जो साज आपको सुनाई दे रहे हैं उनको तो ज़रा पहचानिए। तो अगर आपने इन साजों को पहचान लिया है तो बस इसी में से एक साज के वादक के साथ में आपकी मुलाकात करवाऊंगी। लेकिन ये दोनों कौन से साज हैं इसके बारे में आप मुझे अवश्य लिखें 0439-799-767 पर। और अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शुक्रवार 3 जुलाई के लिए यह न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। न्यू साउथ वेल्स में पहली बार H5 बर्ड फ्लू का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। मिड नॉर्थ कोस्ट में हॉक्स नेस्ट के पास एक बीमार बहुत ही बड़ी पेट्रोल की सूचना आम लोगों ने दी। शुरुआती टेस्टिंग में H5 इन्फ्लुएंजा का परिणाम सकारात्मक आया और अब 500 से अधिक सर्विलेंस स्टाफ क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर तारा मोराटी का कहना है कि पैनिक में खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और समय पोल्ट्री इंडस्ट्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वेलेंजुएला में सिर्फ 38 सेकंड के अंतर में आए दो शक्तिशाली भयानक भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2600 यानी कम से कम 2595 हो गई है। लोगों ने सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि कई लोगों को अपने प्रियजनों की तलाश में नंगे हाथों से मलबा खोदना पड़ा। वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्रेस ने अधिकारियों द्वारा देरी करने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग के चांसलर माइकल स्टिल ने ICAC जांच में सबूत देने से कुछ दिन पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली ये संस्था इस बात की जांच कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी का काम कंसल्टिंग फर्म्स को गलत तरीके से दिया गया था और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ी की गई थी। AFL के पूर्व खिलाड़ी निकी विनमार को उत्तरी विक्टोरिया में एक महिला पर हमला करने का दोषी पाया गया है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली विनमार को 1993 के उनके नस्लवाद विरोधी स्टैंड के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जब उन्होंने भीड़ से नस्लीय दुर्व्यवहार के बाद अपना जंपर उठाया और स्किन की ओर इशारा किया था। कैनबरा में अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की अफगान कम्युनिटी तालिबान राज को किसी भी तरह की मान्यता देने के खिलाफ चेतावनी दे रही है। 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से एग्जाइल में काम करने के बाद एम्बेसी इस हफ्ते औपचारिक रूप से बंद हो गई। डीफैट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया तालिबान को मान्यता नहीं देता है और उनके अपॉइंटेड डिप्लोमेट्स को स्वीकार नहीं करेगा। कल बृहस्पतिवार को भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार इसके साथ ही आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मजबूत संयुक्त संदेश भी दिया गया। नई दिल्ली में हुए 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने लंबी बातचीत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा विकास, समृद्धि और मजबूती के लिए रणनीतिक तालमेल और भरोसे की साझेदारी को आगे बढ़ाना शीर्षक वाले एक संयुक्त बयान को जारी किया। और भारत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अब ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे साधु संत चंपक राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। एसआईटी अपनी पहली जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब एक बार फिर अयोध्या जाकर जमीन और आभूषणों की डिटेल खंगालने पर काम हो रहा है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की। उन्होंने अपने एक संबोधन में दशकों तक चल रही उस सरकारी व्यवस्था के लिए औपचारिक माफी मांगी है जिसके तहत हजारों अविवाहित माताओं को अपने बच्चों को गोद लेने के लिए मजबूर किया गया। क्या है ये पूरी बात और उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रही हैं नताशा कॉल।
3: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने औपचारिक रूप से उन हजारों महिलाओं से माफी मांगी है जिन्हें सरकारी नीतियों के तहत उनके नवजात बच्चों से अलग कर दिया गया था। ये विवादित व्यवस्था 1970 के दशक तक जारी रही। ये बात उन्होंने संसद में दिए गए अपने एक संबोधन में कही। इस व्यवस्था के तहत हजारों अविवाहित माताओं को अपने बच्चों को गोद देने के लिए मजबूर किया गया था। अनुमान के मुताबिक वर्ष 1949 और 1976 के बीच इंग्लैंड और वेल्स में अविवाहित माताओं के लगभग 185,000 बच्चों को गोद लिया गया था।
4: It was awful here. It really was awful. And it's left with me all my life.
3: ये थी लिन रॉडन जिन्होंने पिछले साल बीबीसी से बात करते हुए अपना दर्द साझा किया था। वे ब्रिटेन के सेंट एग्नेस होम लौटी थी जहां दशकों पहले एक अविवाहित युवा मां के रूप में उन्हें अपना नवजात बच्चे को जबरन देने के लिए मजबूर किया गया था। ये जबरन गोद लेने की नीति ब्रिटेन सरकार द्वारा मुख्य रूप से 1949 से लेकर 1976 के बीच लागू की गई थी जिसमें कथित तौर पर चर्चों ने भी सहयोग किया था। और इसी साल की शुरुआत में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी सारा मलेरी ने भी इस मामले में चर्च की भूमिका के लिए माफी मांगी।
5: We are profoundly sorry for the pain, trauma and stigma experienced and still carried today by many people as a result of historical adoption practices in homes linked to the Church of England.
3: चार साल पहले ब्रिटेन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि अविवाहित माताओं और उनके बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए आखिरकार ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस सप्ताह उन कुछ माताओं और बच्चों से मुलाकात की जो इस जबरन गोद लेने की नीति से प्रभावित हुए थे।
6: But I just wanted to take the opportunity to see you personally, face to face, to make that apology as well.
3: और बाद में दिन में उन्होंने सरकार की ओर से औपचारिक रूप से माफी भी मांगी।
7: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
3: माफी के साथ साथ कियर स्टार्मर ने इस नीति से प्रभावित माताओं और बच्चों के लिए कई सहायता उपायों की घोषणा भी की। इनमें गोद लेने से जुड़े रिकॉर्ड तक बेहतर पहुंच और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये संसाधन इसलिए जरूरी है क्योंकि जबरन गोद लेने की इस नीति के प्रभाव आज भी कई परिवारों के जीवन में गहराई से महसूस किए जा रहे हैं।
7: Those who grew up believing that they were unwanted, some of whom were even told directly that they were second class. To those who've carried a burden of loss, confusion and stigma, or who experienced neglect and abuse without the protection or oversight that should have been their right. To those who've experienced lifelong uncertainty, loss, or questions about identity and belonging, or whose mental and physical health, relationships

0: treated differently within these systems.
1: ब्रिटेन उन कई देशों में शामिल हैं जो अब अतीत की उन सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक प्रथाओं और सरकारी नीतियों पर आत्ममंथन कर रहा है, जिनके चलते अविवाहित माताओं को सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गर्भ अवस्था के दौरान उन्हें संस्थाओं में रखा गया और बाद में उनके बच्चों को विवाहित दंपतियों को गोद दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की सरकारें भी ऐसी ही नीतियों के लिए पहले ही औपचारिक माफी मांग चुकी हैं। वहीं नेदरलैंड्स में भी इस सप्ताह डच कैबिनेट ने 1950 से लेकर 1980 के दशक के बीच लागू रही जबरन अलगाव और गोद लेने की नीतियों के लिए आधिकारिक माफी जारी की है। ब्रिटेन में इस नीति से प्रभावित एक मां ने स्काई न्यूज से कहा कि सरकार की ये माफी उनके लिए एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक क्षण है।
2: I am so proud of today. We have waited for this day for so long. It means the world to us.
1: SBS न्यूज से डेबरा गुरारके की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।
3: तो श्रोताओं, आपने ये रिपोर्ट सुनी और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आज मुलाकात करेंगे एक कलाकार के साथ में जो बजाते हैं एक खास वाद्य भी। तो वो कौन सा वाद्य है, या मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि एक धुन आपको सुनवाती हूँ, इनमें जो वाद्य बज रहे हैं बस आप उनको पहचानिए और मुझे लिख भेजिए 0439799767 पर। सुनिए ये धुन। मुझे लगता है कि आपने दोनों ही वाद्यों को बिल्कुल पहचान ही लिया होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपने मुझे उन दोनों वाद्यों के नाम लिख भेजने हैं। आसान सा सवाल है, आप अपना इस सवाल का जवाब भेजें और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
4: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
5: SBS South Asian plays hit.

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं। सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
2: Unscripted, untamed, unforgettable.
3: Launch season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
2: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
4: It's a whole new frontier.
5: Oh my God!
2: The absolutely real.
6: Cold like this can kill you.
2: Reality series.
3: It's on like Donkey Kong.
2: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
7: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे कि जो अभी वीज़ा में जो बदलाव आए हैं, वीज़ा संबंधित आपने सुना ही होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आज यानी जो नई सार्वजनिक सूचना है उसके अनुसार जो वो सेवाएं हैं वो 1 जुलाई से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर और क्या कुछ और हमें जानना चाहिए, इसके बारे में कार्यक्रम में आगे मैं बात करूंगी ही और आपकी एक

0: भी है कार्यक्रम में एक कलाकार के साथ जो बजाते हैं एक साज। और अगर कार्यक्रम में आप बस अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, तो एक धुन मैंने आपको इस अंतराल से पहले सुनवाई थी, उसको मैं आपको दोबारा सुनवा देती हूँ और आप जरा पहचानिए तो कि ये कौन से वाद्य बज रहे हैं। तो आपने इन वाद्यों को तो पहचान ही लिया होगा, तो बस आपने अपने जवाब मुझे लिख भेजने हैं 04397997667 पर। और अभी भारत से हमारे संवाददाता विश्वरतन के साथ ये रिपोर्ट।
1: भारत और जापान ने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकायची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को शिखर वार्ता हुई। इस दौरान आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया।
2: Today's engagements have yielded several substantial outcomes, broadly falling under three crucial areas, and I'll take you through them very briefly. These areas are economic security, energy resilience, and technology and innovation. It is significant that many of the outcomes that were finalized during the course of this summit fall in the area of economic security, whether it's the memorandum of cooperation in the field of batteries, or pharmaceuticals, including APIs and KSMs, or technical collaboration for resource exploration and mapping of critical minerals. The second major area of discussions today was energy resilience.
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए मिलकर काम करने को लेकर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की है। दोनों नेताओं की बातचीत का ब्यौरा देते हुए विक्रम मिस्री कहते हैं,
2: Both leaders acknowledge the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास में जापान की भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री तकायची के साथ शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
3: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।
1: इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए मिलकर काम करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
3: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लाने की तैयारी चल रही है। राज्य की भाजपा सरकार विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने वाली है। भाजपा लंबे समय से सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की वकालत करती आई है। हालांकि पहले प्रस्तावित कानून के मसौदे की समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसे 4 हफ्ते का समय दिया गया है। राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने इस बारे में बताया,
4: 4 हफ्ता के लिए हमारे ऑनरेबल जस्टिस देसाई जी को दिए हैं और वो चार हफ्ता वो देखेंगे और फिर वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रखा जाएगा, टेबल किया जाएगा।
1: यूसीसी विधेयक का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस इन दिनों आंतरिक गुटबाजी और विघटन के कगार पर है। दो तिहाई सांसदों का गुट पहले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी का साथ छोड़ चुका है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहा है। ज्यादातर विधायक बागी गुट के साथी हैं। पार्टी पर किसका दावा ज्यादा मजबूत है, इसका फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी यानी दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। 6 जुलाई यानी सोमवार तक इन्हें अपने दावे के समर्थन में जवाब आयोग को पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल के बाद अब चर्चा उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्माता जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर दान एवं चढ़ावे में हेरा फेरी करने का आरोप लग रहा है। चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद SIT जांच में कुछ खुलासे हुए हैं। अब तक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ का आरोप भाजपा RSS पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस नेता प्रवीण पाठक ने इस बारे में कहा,
5: स्वप्न बहुत सुंदर होते हैं लेकिन क्षण में मिट जाते हैं। जैसे क्षण भंगुर है जीवन, वैसे ही सपने होते हैं। स्वप्न देखना है तो देखो, लेकिन सोच समझ कर देखो। सपने बड़े क्रूर होते हैं, सपने सदा चूर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, RSS ने इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को, इस देश के धर्म प्रेमियों को जो सपने दिखाए हैं, वो एक एक करके सारे सपने टूटते जा रहे हैं, चूर होते जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि जो राम को लाने की बात करते थे, बड़ा आश्चर्य होता है कि वो राम भगवान के यहाँ जो चंदा चोरी हुआ, जो चढ़ावा चोरी हुआ, उसको भी आज आपके समक्ष वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रवीण पाठक कहते हैं,
5: जब हर बात का श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, बड़े अग्रसर रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो इस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
1: भाजपा लगातार निष्पक्ष जांच की बात दोहरा रही है। पार्टी का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। विवाद के केंद्र में रहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इस बैठक के दौरान इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: श्रोताओं, भारत से आपने ये रिपोर्ट सुनी और अब समय हुआ है एक अंतराल का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके संदेश ना आएं। आप अपने संदेश मुझे भेजते रहिए।
6: SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
7: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
8: SBS साउथ एशियन

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए. SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ. sbs.com.au/food पर जाएं.
2: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स. ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे. हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर. SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है. SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है. इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें.
1: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है. sbs.com.au/guide पर जाएं.
3: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
4: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको एक झलक सुनवाई थी तो हमारे श्रोता ब्रजेश जी ने उस धुन को सुनकर अपना सही जवाब तो लिख भेजा है और हमारे एक श्रोता उसे दोबारा सुनना चाहते हैं. तो लीजिए, आप सबके लिए उसकी झलक एक बार फिर सुनवा रही हूँ. जी, तो मुझे लगता है कि आपने अब तो इन दोनों ही वाद्यों को पहचान भी लिया होगा. तो अपना जवाब आप मुझे लिख भेजिए 04397997667 पर और कार्यक्रम में आगे आपकी मुलाकात करवाऊंगी ही उस कलाकार से जो उनमें से एक वाद्य को बजाते हैं. और आइए अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में VFS ग्लोबल और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से जुड़ी काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को लेकर जो महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं. अब नई सार्वजनिक सूचना के अनुसार ये सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं. लेकिन इस दौरान आवेदकों की सहायता के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और समर्थन सेवाएं तो जारी रखी गई हैं. क्या है वो और ये क्या है पूरी चीज़ जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है जानना, तो सुनिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन.
5: VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की सार्वजनिक सूचना के तहत ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीजा यानी CPV सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं. नोटिस में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये अस्थायी रुकावट विशेष रूप से उन आवेदकों के लिए असुविधा और अनिश्चितता का कारण बन सकती है जिन्हें तत्काल यात्रा या काउंसलर सेवाओं की आवश्यकता है. SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन. लगभग 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के रितेश जी, जो अब एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और भारतीय समुदाय के बीच काफी सक्रिय रहते हैं, इस स्थिति पर अपनी राय हमारे साथ साझा करते हैं.
6: इस तरह से जुलाई का महीना है जब स्कूल हॉलीडेज है, पिक सीजन है, फैमिलीज ट्रैवल करेंगी और इस टाइम में ये इश्यू हुआ है. अभी इसमें क्या हुआ है कि पासपोर्ट रिन्यूअल से बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स के वो रुके हुए हैं. OCI कार्ड जिनको प्रोसेस कराने हैं वो उनको दिक्कतें आ रही है. पुलिस क्लियरेंसेस अटके हुए हैं, प्लस अटेस्टेशन सर्विसेज पे दिक्कतें आ रही है. और ट्रैवल का मैं इसलिए बोला कि ऑलरेडी ई वीजा अलाउ किया है हाई कमीशन ने, बट फिर भी लोग आज परेशान है कि भाई कुछ लोग हैं उनको भी कि अब करें तो क्या करें, हमके किसी का कुछ OCI का कुछ काम अटका हुआ था. ओवरऑल केओस, तो काफी पैनिक का माहौल है. इतनी दिक्कतें मतलब हो रही है. एंड इट्स लाइक यू नो, मैं एक चीज और एक बताना चाहता हूँ. कुछ मुझे मेरे एक परम मित्र है, उन्होंने ये बताया, उन्होंने याद दिलाई सुषमा जी की, कि सुषमा जी ने सिचुएशन इतनी सुधार दी थी. उन्होंने जब सुधार लाए थे देन इट वाज क्वाइट वेलकम चेंज. इनफैक्ट मेरा पासपोर्ट इतना जल्दी आ गया था, मेरा उस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर था मैं, और रिन्यू करके इतना जल्दी आ गया कि मेरे वर्क कलीग थे जो लोकल ऑस्ट्रेलियन, वो भी सरप्राइज होकर बोलते यार गजब है, मतलब इंडिया इतना तरक्की कर गया कि इतना जल्दी तुम्हारा पासपोर्ट आ गया और हमें तो बहुत दिक्कत आ रही है। और मेरा जो कमेंट था, फिर मैंने देखिए जो अच्छा काम है उसको उसकी सराहना भी करनी चाहिए, तो मैंने एक कमेंट मैंने किया था कुछ सोशल मीडिया में और वो कमेंट हमारे जो प्रधानमंत्री उनके पोर्टल में चला गया था कि देखो ये NRI है और ये हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कहने के लिए कि उसके बाद जो स्पेशली कुछ समय से जो सिचुएशन है इतनी खराब हो रही है और इट वी हैव एक्चुअली गॉन बैकवर्ड्स वे बैकवर्ड्स और अब तो ये मतलब बिल्कुल ही बैठ ही गया है, तो इट्स वेरी सैड।
5: वो आगे डायस्पोरा के बीच फैली निराशा और असमंजस की भावना जाहिर करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं।
6: डायस्पोरा जो है हमारा इंडियन डायस्पोरा, ये बाहर रह के भी जो देश के लिए जो प्यार है हमें, वो इंडिया को सपोर्ट करता है और ये देखा जाता है कि अभी मोदी जी आने वाले, इसके लिए बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही है, प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जा रहे, रेडी हो रहा है, लोग बड़े उत्साहित है जाने के लिए उस प्रोग्राम्स में। एंड देन सडनली कम्युनिटी को ये भी जब पता चल रहा है कि भाई ये हमें अभी वीजा का इश्यूज आने लगा है, तो दे आर क्वाइट वरिड भाई क्या होगा, चल क्या रहा है, मतलब व्हाट इज देयर, क्या हमारे काम रुके हुए सारे।
5: शेरो शायरी का शौक रखने वाले रितेश जी ने अपने विचार कुछ इस अंदाज में भी बयां किए हैं।
6: सरहदों के पार भी धड़कते हैं कई दिल तेरे लिए ऐ हिंदुस्तान, सिर्फ कागजों का मोहताज ना रह जाए अरमा हमारे ऐ हिंदुस्तान, मुश्किलों में हाथ थाम लेने का वादा किया था सुषमा जी ने कभी, मुश्किलों में हाथ थामने का वादा किया था सुषमा जी ने कभी, दूर सही पर हम भी तेरे बच्चे हैं ऐ हिंदुस्तान।
5: हाल ही में मई के महीने में मेलबर्न में नए काउंसिल जनरल अनीश रंजन ने भारतीय मीडिया के पत्रकारों के साथ एक छोटी सी बैठक की। इसे कवर करने के लिए SBS हिंदी टीम की तरफ से नताशा कॉल भी वहां मौजूद थीं। इस दौरान काउंसिल जनरल ने भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, जिनमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI से जुड़े विषय भी शामिल थे। VFS कार्यालयों में OCI और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने में लंबी प्रतीक्षा को स्वीकार करते हुए अनीश रंजन ने यह भी साझा किया कि इस समस्या के समाधान और प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कार्यालय किस तरह काम कर रहा है। उन्होंने मेलबर्न के VFS सेंटर में दी जाने वाली सेवाओं को लेकर कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं इस बारे में भी बताया।
7: तो ये एक खुशखबरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि VFS सेंटर जो अभी स्वैनसन स्ट्रीट में फंक्शन कर रहा है, उस ऑफिस को हम चेंज कर रहे हैं और नया VFS का ऑफिस उसका इनॉग्रेशन होगा सेंट किल्डा रोड में अगले 5-6 हफ्तों में। तो उसके बाद क्योंकि नए बिल्डिंग में 15-16 काउंटर्स हो सकता है, तो उससे ज़्यादा हम सर्विस दे पाएंगे। और अभी जो अपॉइंटमेंट साइकिल का प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट साइकिल मीन्स जितने टाइम में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आज अगर मैं एक पासपोर्ट या OCI कार्ड या वीसा के लिए अप्लाई करता हूँ, अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट जब मिलेगा उस डेट को हम अपॉइंटमेंट साइकिल बोलते हैं 4 वीक्स, विच मीन्स आपको फर्स्ट पासपोर्ट अपॉइंटमेंट मिलता है 4 वीक्स के बाद। तो वो कम होगा क्योंकि ज़्यादा काउंटर होगा और काउंटर में VFS स्टाफ बैठेगा, और उस वजह से आई थिंक काफ़ी जो अपॉइंटमेंट साइकिल लंबी चल रहा है पासपोर्ट PCC और OCI और अदर सर्विसेज का, वो बहुत कम हो जाएगा। एंड वी विल सी की और किस किस तरह इस सर्विस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक साल पहले जिस एफिशिएंसी के साथ काउंसलर सर्विसेज यहाँ पे होता था, उस स्पीड, उस रफ्तार, उस एफिशिएंसी वापस लेकर आने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम आप सभी का सहयोग, फीडबैक और ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। एंड आई एम श्योर दैट वी विल गो बैक टू हैविंग एक्सेलेंट सर्विसेज which were being provided 1 year before.
8: आइए अब जानते हैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जारी इस नोटिस में आवेदकों के लिए दी महत्वपूर्ण जानकारी। आपातकालीन काउंसलर सहायता की आवश्यकता वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट देखें। जो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए तैयार हैं, उन्हें मौजूदा पासपोर्ट रिटर्न प्रक्रिया के अनुसार VFS ग्लोबल द्वारा आवेदकों को वापस किया जाता रहेगा। जो आवेदन वर्तमान में प्रोसेसिंग में हैं, वे सेवाएं बहाल होने तक पेंडिंग रहेंगी। आवेदकों से अनुरोध है कि वह संबंधित अधिकारियों की ओर से आगे की अपडेट का इंतजार करें।
5: नोटिस में आगे ये भी जानकारी दी गई है कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में टीमें कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं और निर्देशों के अनुसार आवेदकों को जानकारी और सलाह प्रदान करना जारी रखेंगी। VFS ग्लोबल इंडिया काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर्स में सेवाएं तब फिर से शुरू होंगी जब उन्हें जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बहाल किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो ताज़ा जानकारी के लिए कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में स्थित विभिन्न काउंसलेट्स जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट्स को नियमित रूप से देखते रहें। सभी आवेदकों के धैर्य, समझ और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया है। ये भी कहा गया है कि VFS ग्लोबल इस अस्थायी अवधि के दौरान जहां तक संभव हो समय पर सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे ही अनुमति मिलेगी सेवाएं फिर से शुरू करने की आशा रखता है।
8: इस बीच आवेदकों की सहायता के लिए VFS ग्लोबल ने अपनी ग्राहक सहायता व्यवस्था यानी कस्टमर सपोर्ट अरेंजमेंट्स को और भी मजबूत किया है। आप कॉल सेंटर नंबर 03995638300 पर ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल इंक्वायरीज info.ind_aus@vfshelpline.com पर भेजी जा सकती हैं।
5: VFS, जिसका पूरा नाम वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज है, एक निजी कंपनी है जो कई सरकारों की ओर से प्रशासनिक सेवाएं संभालती है, जैसे वीज़ा आवेदन, पासपोर्ट नवीनीकरण, OCI दस्तावेजों का संग्रह और सत्यापन और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय काउंसलर सेवाओं के लिए अक्सर आवेदकों को OCI या पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए VFS ग्लोबल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, जबकि अंतिम मंजूरी काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया या हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। SBS हिंदी पे ये रिपोर्ट शैना कालरा के सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
4: तो श्रोताओं, आपने ये रिपोर्ट सुनी कि ऑस्ट्रेलिया में VFS ग्लोबल और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से जुड़ी जो काउंसलर पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं वो क्या हैं, और जैसा कि बताया कि कुछ असुविधाएं जो हो रही हैं वो अस्थायी रूप से ही हैं, उसके ऊपर काम चलेगा ही। और आगे बढ़ने से पहले आइए क्यों ना ये गाना सुनते चलें।

0: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
1: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम, SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
3: Lord Season 4, the Arctic.
4: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
5: It's a whole new frontier.
6: Oh my God!
4: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
0: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
7: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। हमारे श्रोता मनन जी ने अपना सही जवाब लिख भेजा है। उस जो मैंने साज की जो धुन की जो झलक सुनवाई थी उसके लिए, और हमारे श्रोता पीयूष जी का भी संदेश मिला है। पीयूष जी, आपका सुझाव और आपकी पसंद का गाना भी नोट कर लिया है, संभव अगर होगा तो आज ही, नहीं तो कल के कार्यक्रम में उसे हम शामिल कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने वो जो झलक सुनवाई थी बताती चलूँ, जी हाँ, साज, सारंगी और तबला था। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, SBS पर मैं हूँ अनीता बरार। आइए आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ भारत में मशहूर मिश्रा परिवार के 8वीं पीढ़ी के सारंगी वादक संगीत मिश्रा जी के साथ, जो उत्तर भारतीय क्लासिकल संगीत की परंपराओं से गहराई से जुड़े एक जाने माने कलाकार हैं। शास्त्रीय संगीत की पुरानी परंपराओं और तकनीकी में आज के दौर के म्यूजिकल इनोवेशन को मिलाकर सारंगी म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने एक खास पहचान बनाई है। हिंदी फिल्मों और सीरीज जैसे कि हीरा मंडी के गाने, फिल्म छावा का बैकग्राउंड स्कोर, रईस, केदारनाथ और कई एल्बम्स में उनकी बजाई सारंगी सुनाई देती है। सारंगी बजाते समय उंगलियों के पोर या नाखून नहीं बल्कि नाखूनों के क्यूटिकल्स तारों के किनारों पर दबाव डालते हैं, जिससे स्लाइडिंग माइक्रोटोन बनती है। खासा दर्द होता है बजाने में, शायद इसीलिए कहते हैं कि सारंगी बजाना बहुत मुश्किल होता है। बस यही सवाल संगीत जी से पूछा तो वो कहते हैं,
8: सारंगी इसलिए भी लोगों ने उसको एक ऐसे मुश्किल बोला कि सारंगी में ज्यादातर संगत हुई है, ज्यादातर संगत बजाते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप ओल्ड समय में देखिए, जो संगतकार होते थे उनको वैल्यू कम दिया जाता था, मेन आर्टिस्ट थोड़ा पेमेंट में भी, मतलब मैं खुल के बोल रहा हूँ, पेमेंट में भी 50% में भी 60% में भी ज्यादा लेते थे और एक छोटा अमाउंट संगतकार को देते थे। तो संगत करने वालों को काम तो उतना ही है जितना कोई गायक गा रहा है, हम साथ में सेम तो सेम बजा रहे हैं, मुश्किल काम है वो जी। लेकिन पेमेंट कम मिलता तो इसलिए भी एक लोगों ने बना दिया बहुत मुश्किल है
7: जी। सारंगी संगत पहले संगत का वादा था। तो चाहे वो स्टेज के बिल्कुल पीछे बैठे होते थे, लेकिन जब गायक गाते गाते रुकता उससे तो सारंगी सुरों को पकड़ के उसको अच्छे, तो गायकी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण और उभर के आता है।
8: क्योंकि ना सारंगी ही गायन के साथ ही संगत के लिए बना था, उसमें पूरी गायकी ही बसती है।
7: तो जब आप किसी के साथ संगत कर रहे हैं तो गायक के शब्दों को भी ध्यान में रखना होता होगा आपको?
8: नहीं, गायक के शब्दों को नहीं, गायक के शब्द के पीछे स्वर क्या लग रहे हैं, वो स्वर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई तो शब्द यूज कर रहा है ऑडियंस के लिए, बट उस हर शब्द के पीछे में एक स्वर होता है ना, हम उस स्वर को फॉलो करते हैं। बट वो इतना क्विक होता है कि गायक गा रहा है और विद इन अ सेकंड के अंदर वो सेम चीज बजता चलता, साथ साथ बजता रहता है
7: जी। एक लंबे समय तक सारंगी बड़े दर्द भरे सुरों के लिए जानी जाती थी
8: जी।
7: आपने रेडियो खोला, सारंगी की आवाज सुनाई थी तो लगता है कि कहीं कुछ हो चुका है, वो शोक धुन के साथ में जुड़ गई थी। लेकिन अब सारंगी उससे बाहर निकल आई है, तो ये ट्रांजिशन आप कैसे बताएंगे?
8: देखिए, सारंगी को ना बहुत, सारंगी और सारंगी प्लेयर को बहुत दबाया गया पहले, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देखिए, सारंगी या तो कोठा, बॉलीवुड की वजह से कोठे का सीन है तो सारंगी दिखा दिया
7: जी,
8: और कोई बड़ा कोई गुजर गया तो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पे सारंगी बजा दिया, वो भी विदाउट रिदम। तो दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं, सारंगी मतलब बस दुखी ही है। पर ऐसा नहीं, सारंगी का पुराना नाम सौरंगी है, उसमें 100 डिफरेंट इमोशंस निकलते हैं। तो आप जब राजस्थान देखते हैं, पंजाब देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो हैप्पी, मतलब जो खुशी वाले गाने हैं उसमें भी सारंगी बज रहा है। राजस्थान में डांसिंग, जो डांस वाले कालबेलिया और ये सब डांसेस होते हैं, घूमर है, उसमें आप देखेंगे कि सारंगी बज रहा है
7: जी। बिल्कुल, आपने 100 रंगों वाली बात की है, बिल्कुल अनोखा साज है,
8: अलग अलग इमोशंस बेसिकली उसमें से आ रहा
7: है। बिल्कुल अनोखा है, और शायद इसलिए भी बहुत मुश्किल काम होता होगा उन 100 जो रंग है उनको कहीं पर बांध लेना, उनके मूड को समझ पाना। आप तो 8वीं पीढ़ी के सारंगी वादक हैं।
8: मैंने सारंगी शुरू किया 7 से 9, 8-9 साल की एज में सारंगी पकड़ी, छोटी सारंगी थी मेरी। लेकिन उसके पहले गाना सीखता था, मेरे ग्रैंडफादर थे वो, बच्चों को, सारे नेबर्स के बच्चों, मतलब 20-25 बच्चे जो भी जमा हो जाए सबको बैठा के सिखाते।
7: आपका तो नाम में ही संगीत था, तो अगर संगीत नहीं होता तो क्या होता?
8: कि मेरे बड़े भैया संदीप हो गए थे, मम्मी और पिताजी का नाम का कॉम्बिनेशन, पापा का नाम संतोष था और पिता मम्मी का नाम गीता, तो उन्होंने सोचा संगीता रखेंगे, लड़की चाहिए, पर मैं तो लड़का हो गया तो उन्होंने ए हटा दिया, लाल से संगीत हो गया।
7: तो संगीत हो गया, और संगीत अपने आप आपके साथ में जुड़ ही गया और आप संगीत को आगे लेकर बढ़ ही गए हैं। तो किसका आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव आप कहना चाहेंगे कि पड़ा होगा?
8: देखिए, सारंगी बहुत सारे, मतलब मैं तो बहुत बाद में, मेरे दो जनरेशन पहले हमारे ग्रैंडफादर जो हुए, फिर पंडित नारायण दास मिश्रा जी, मतलब मेरे ग्रैंडफादर पंडित गोपाल जी मिश्रा जी ग्रैंडफादर, और फिर पंडित राम नारायण जी थे, सुल्तान खान साहब थे, उस्ताद सुल्तान खान साहब, इन सारे लोगों ने, वो जो एक समय था आज से 30-40 ईयर बैक, उन्होंने तभी से सोलो चालू कर दिया। मतलब संगत तो करते ही थे, लेकिन उन्होंने सोलो ज्यादा ज्यादा परफॉर्म करने लगे, तो उससे क्या हो गया कि फिर लोगों में थोड़ा सा सोलो सुनने की आदत, पहले आप देखिए पहले के महफिल जो होते थे शास्त्रीय संगीत की महफिल, भारत में भी सारंगी सोलो बहुत कम होता था
7: जी।
8: लेकिन ये लोग, बड़े बुजुर्ग गुरुओं ने ये इसको आगे बढ़ाया, अब उसका फायदा हमको मिल रहा है। अभी आप सिर्फ सोचिए कि जो संगत करते थे सिर्फ पहले के समय में
7: जी,
8: गाने के साथ, गाना सुनने के बाद जब ऑडियंस घर जाती तो क्या बोलते थे, अरे खान साहब ने या पंडित जी ने क्या गाया, कितने लोगों का ध्यान जाता है कि तबला वादक बहुत अच्छा था या सारंगी वाला क्या बजा के गया, बहुत कम। बहुत समझदार होगा कोई तो सोचेगा कि यार अच्छा किया वो उसने भी, लेकिन जब आप सारंगी सोलो बजा के उठते हैं तो आपको ही याद करते लोग, अरे वाह सारंगी पे क्या धुन बजाई,
7: क्या।
8: तो सोलो होने से एक पहचान मिलता है।
7: आपके ऊपर आपके गुरु की कौन सी परंपरा या तकनीक का प्रभाव है?
8: मेरा जो घराना है, जैसे लोगों को पता होगा कि संगीत के घराने होते हैं, तो हम, मेरा घराना बनारस है, तो मेरे गुरुजी या फिर बोले बनारस घराना का एक स्पेशल ये है कि वहाँ सिर्फ ख्याल गायकी नहीं थी, थुमरी दादरा ख्याल और इन सब का मिश्रण ध्रुपद धमार, ये हमारे स्वतंत्र वादन में आता है। मतलब जब मैं सोलो करता हूँ ये सारी चीजें उसमें आती हैं, गायकी और तंत्रकारी और ध्रुपद और ठुमरी, ये सारी चीजों का मिश्रण जो है बनारस घराना है।
7: और कभी कुछ ऐसा क्षण आया जो आपके लिए एक याददाश्त पल बन गया?
8: मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज, मतलब मेरे पिताजी मेरे गुरुजी थे
7: जी,
8: एक ही चीज बोला कि कभी कभी क्या होता था कि हम अब एज अ फ्रीलांसर बहुत मुश्किल भी कभी कभी आता है, कभी कभी ऐसे समय भी होते हैं कि कुछ काम नहीं होता है, पर तो मेरे पिताजी ने एक ही चीज बोला कि बेटा अगर काम नहीं है ना तो भी बैठ के रियाज करते रहो, क्योंकि जितना तुम कर्म करते रहोगे ना ये ऊपर कोई भी जो भी जिसको लोग मानते हैं वो सब देख रहा है, तो वो आपको आज नहीं कल ऐसा देगा, तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गया। तो फिर वो जब रियाज करना शुरू किया तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता कि मेरा मुझे बहुत सारे काम और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी, जैसे रिसेंटली मैं अभी सऊदी अरब में गया तो मुझे 35 इंटरनेशनल म्यूजिशियन के साथ काम करने का मौका मिला और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चांस, फिर मुझे संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला, युवा पुरस्कार, तो मतलब विश्वास के ऊपर है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें और गुरु भक्ति।
7: और अभी जो मॉडर्न म्यूजिक है, अभी कुछ समय पहले रॉक म्यूजिक में भी सारंगी सुनाई दी हमें, तो सारंगी का भविष्य आपको क्या दिखता है और युवा पीढ़ी के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
8: मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्सप्लोर करना चाहिए अलग अलग जोन, अलग अलग जोन जोनर में जाके, क्योंकि अगर लोगों को हम सुनाएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा। आज भारत में ही बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ लोग आज मैं बजाने तो सितार बहुत अच्छा बजाया आपने, उनको पता ही नहीं सारंगी क्या है।
7: हाँ।
8: अरे वाह वायलिन बड़ा अच्छा लगा आपका, नहीं पता क्योंकि लोगों ने देखा ही नहीं है, भारतीय वाद्यों को देखा नहीं है।
7: तो उसका भविष्य कैसा दिखता है आपको?
8: भविष्य अच्छा है, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है।
7: हाँ।
8: क्योंकि हम लोग सारे लोग जो भी सारंगी वादक, क्योंकि सारंगी वादक बहुत लिमिटेड है, सारंगी के लिए काफी खुल गया है, मतलब वो गजल के साथ भी बजा सकता है, वो फ्यूजन के साथ भी बजाता है, वो जैज के साथ भी सोलो भी बजाता है, तबला सोलो के साथ संगत कर सकते हैं, कथक के साथ करते हैं। अभी मैंने भरतनाट्यम के साथ किया जो दक्षिण भारतीय डांस शैली है, जहाँ पे सारंगी तो कभी बजा ही नहीं। तो धीरे धीरे रास्ते तो खुल रहे हैं ना
7: जी।
8: बट हमारा काम क्या है, हमको जितना ज्यादा से ज्यादा सारंगी को लोगों के निगाह में, लोगों के दृष्टि में आएगा तो उसका फायदा मिलेगा और भविष्य अच्छा है।
7: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए चलते चलते क्या सलाह देंगे?
8: जिनको प्रोफेशन में आना है मैं बोलूंगा कि रियाज आपको अपने और अपने सास को समय देना पड़ेगा अलग से, और गुरु का बात फॉलो करिए। अगर आपको राज करना है अपने फील्ड में तो रियाज करना।
7: जी रियाज करें, राज करें और वही सारंगी का भविष्य बनेगा।
8: बिल्कुल,
7: तो
8: बिल्कुल।
7: बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी दूंगी और आपने समय निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपका।
8: धन्यवाद आपको।

सुरेंद्र जी, आपका संदेश भी मिला है। श्रोताओं, आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपसे मुलाकात करूँगी कल के कार्यक्रम यानी शनिवार के कार्यक्रम में। आप सभी को अनीता बरार का नमस्कार।

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
1: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी बातें

पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कटकटरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Your news from here
1: and hits from home. SBS South Asian.
2: Hey, yo.

Thank you.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खबा खबा।

काटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सरा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेतों की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हम चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे। जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़े जब उसके कदम, करते सख्त जमीन को फिर।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, पवन डर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहा, होटो पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

है सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वहाँ भी एक रात हुआ है। आँख उठा के देखे जब वहाँ मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

काटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार गई, वो जा रहा है कोई शब्द का। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दिन।